जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज्र करेंगे, तुम कहना कि उज्र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, खुदा ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी खुदा और उसका रसूल तुम्हारे अमलों को और देखेंगे, फिर तुम गायब व हाजिर के जानने वाले खुदाए वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे और जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा।

उनके लिए जो फायदे हैं दुनिया में हैं, फिर उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है, उस वक्त हम उनको अजाब शदीद के मजे चखाएंगे, क्योंकि कुफ्र की बातें किया करते थे।

और हमने बनी इसराइल को रहने को उम्दा जगह दी और खाने को पाकिजा चीजें अता की, लेकिन वो बावजूद इल्म होने के इख्तलाफ करते रहे। बेशक जिन बातों में वो इख्तलाफ करते रहे हैं, तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उनमें उन बातों का फैसला कर देगा।

0: देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि खुदा से पर्दा करें। सुन रखो, जिस वक्त ये कपड़ों में लिपट कर पड़ते हैं तब भी वो उनकी छुपी और खुली बातों को जानता है, वो तो दिलों तक की बातों से आगाह है।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम।
2: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: हेलो, यू आर लिसनिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम योर RJ रमशा जैदी विद द न्यू हेल्थ टिप ऑफ द डे। If you are a tobacco smoker or abuse drugs, then diet and exercise are the least of your worries. Tackle those problems first. If you choose to include alcohol in your life, then do so in moderation only, and consider avoiding it completely if you have alcoholic tendencies. That's all from the segment Health Tip of the Day. Stay tuned with FM 92.6 UCP Ki Duniya.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This
2: is 92.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोबाइल रोबोटिक्स टू मेडिकल मिरेकल्स, और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी सर, आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि रोबोटिक्स की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बहुत सी हैं, सबसे सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन कौन सी है?
4: रियल वर्ल्ड में रोबोटिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशन है, मतलब और हर जो एप्लीकेशन है वो मतलब सिग्निफिकेंट ही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरे ख्याल से हेल्थ केयर जो है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मुझे उस तरह सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। उनमें सबसे बेस्ट है रिहेबिलिटेशन रोबोट्स हैं, वेरिएबल रोबोट्स हैं, टेली प्रेजेंस रोबोट्स हैं, प्रोस्थेटिक्स हैं जैसे कि रोबोटिक्स आर्म्स एंड लेग्स एंड प्रोस्थेटिक फुट्स हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट्स हैं, लेबोरेटरी रोबोट्स हैं जो कि सैम्पलिंग करते हैं और मल्टीपल ऐसी मेडिसिंस बना रहे हैं जो कि ह्यूमंस नहीं बना सकते हैं, और सैम्पलिंग ले भी रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी सैम्पलिंग्स हैं, और डिसइंफेक्टेंट रोबोट्स हैं जो कि एरिया को डिसइंफेक्ट कर देते हैं जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते हैं, और सर्विसेज रोबोट्स हैं, नर्स रोबोट्स हैं, और हद तक नैनो रोबोटिक्स भी हैं के छोटे रोबोट्स जो कि डायरेक्टली आपके पर्टिकुलर ऑर्गन तक ड्रग डिलीवर कर देते हैं, और बता के डायग्नोसिस के लिए भी हम वो नैनो रोबोटिक्स यूज कर रहे हैं। तो मेडिकल में इसकी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, काउंट नहीं कर सकते आप।
3: सर, आप अभी मेडिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, आपने खुद भी इस डोमेन में कोई कंट्रीब्यूशन किया है?
4: यस, मैंने प्रोस्थेटिक फुट बनाया था कि हमारी बेसिकली वो इंस्पायर ये हुआ था कि हमारे जितने भी मोस्टली जो प्रोस्थेटिक फुट यूज कर रहे हैं वो आर्मी पीपल यूज कर रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी
3: इंजरीज
4: तो उनकी लेग्स और फुट इंजर हो जाते हैं, तो फिर उनको तो अभी तक वो क्या यूज कर रहे हैं, वो सिंपली वुड का बना हुआ यूज कर रहे होते हैं, तो वो काफी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर और टू नॉर्मल फुट। तो वर्ल्ड तो इस चीज में बहुत आगे जा चुकी है, और वो अगर आप फुट एक फुट भी आप इम्पोर्ट करें तो मैं भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई नॉर्मल पीपल,
3: ऐसे ही है।
4: तो वो हमने उनके ही वहाँ से हमने उनके जो प्रैक्टिकल उनकी लैब्स थी वहाँ से हमने उनके लिए कार्बन फाइबर का फुट तैयार किया क्योंकि उसका वेट सबसे लेस होता है, और उसके डिज़ाइन में हमने सारी मदद की। और फिर ये था कि जिसका फुट नहीं है तो हम उसके अपर लेग पार्ट से सेंस करके सिग्नल्स को और फुट को जैसे ह्यूमन गेट जैसे ह्यूमन चलता है उस हिसाब से फुट की मूवमेंट कर रहे थे, यानी कि पूरे पाकिस्तान में वो पहला प्रोजेक्ट था। और फिर हम उसी को लेके हम एप्टिका श्रीलंका गए, वहाँ पे भी हमारी फर्स्ट पोजीशन आई,
3: जबरदस्त,
4: और उस टाइम ये नस्ट और पाकिस्तान का फर्स्ट रोबोट था, तो हम बहुत एक्साइटेड थे जब कहता कि पूरे नस्ट ने भी उसको हम बहुत अप्रिशिएट किया और उसको वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं।
3: जबरदस्त। सर, आपने अभी मेडिकल रोबोटिक्स की बात की है, क्या ये सिर्फ हॉस्पिटल तक मौजूद है या घरों तक भी पहुंच गई है?
4: नहीं, रोबोट्स तो अब वाकई सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं है, हम जो जितने भी यूरोप और हाई एंड कंट्रीज हैं वहाँ पे रोबोट्स घर में भी हैं, एज आ सर्विस भी यूज कर रहे हैं, एज आ वेरिएबल रोबोट्स भी यूज हो रहे हैं, मतलब जिनको चलने या फिरने में इशू आता है तो वो उनके लिए वेरिएबल रोबोट्स हैं। रिहेबिलिटेशन रोबोट्स यूज हो रहे हैं, वो इसलिए कि अगर किसी को इंजरी हो जाए तो रिकवर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स और इनमें यूज होते हैं, ये लाइक प्रोस्थेटिक्स रोबोटिक्स आर्म्स और लेग्स यूज हो रही हैं, मतलब अब तो ये सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं है, ये एवरीडे लाइफ में यूज होना शुरू हो गया।
3: सर, रोबोटिक नर्सेज का आपके ख्याल में फ्यूचर क्या है?
4: रोबोटिक नर्सेज जैसे रिपीटेटिव टास्क हैं जो कि रोज उन्हें करने हैं कि मेडिसिन रिमाइंडर्स देने हैं या उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करनी है, अगर पेशेंट को लिफ्ट होने में प्रॉब्लम है तो उसको लिफ्ट कैसे करना है, और तक आगे जाके तो AI पावर डिसीजंस भी वो नर्सेज ऑटोमेटिकली लेंगी, तो ये इसका आगे स्कोप तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आप हॉस्पिटल इतने ज्यादा नहीं बना सकते हैं, तो अब ये होगा कि इवेंचुअली आप एक रोबोट जो है वो केयर के लिए घर में ही केयर हो जाएगी और आपको हॉस्पिटल को अपना रूम या बेड ऑक्यूपाई नहीं करना पड़ेगा।
3: सर, जब हम रोबोटिक्स बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो आपके ख्याल में कितने रिलायबल हैं, क्या उन पर डिपेंड किया जा सकता है?
4: रोबोटिक्स की रिलायबिलिटी तो काफी हाई होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन 100% नहीं होती है, क्योंकि रोबोटिक्स प्रेडिक्टेबल तो होते हैं लेकिन ह्यूमन सुपरविजन जरूरी है, उसकी टेस्टिंग, वैलिडेशन और फेल सेफ मैकेनिज्म हर रोबोट में होने चाहिए और होते भी हैं, बट मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इट्स अ रोबोट।
3: सर, अगर कोई गलती कर देता है रोबोट तो उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आती है?
4: ये तो सिचुएशन पर डिपेंड है कि उस टाइम एक्चुअली क्या फ्लॉ आया। अगर तो डिज़ाइन फ्लॉ आया तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर उसका यूज़ मिस यूज़ हुआ तो वो तो ऑपरेटर पर डिपेंड है, और अगर सिस्टम लेवल इशू है तो वो इंस्टीट्यूशन पर जिम्मेदारी टाइट होती है। लेकिन इसलिए ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसकी ये है कि अब रोबोटिक्स के ऊपर लीगल फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि अगर क्योंकि रोबोटिक्स इन्वॉल्व हो गए इतने ज़्यादा लाइफ में, तो अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होगा फिर जिम्मेदारी किस पे आएगी और क्या लॉज होने चाहिए, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है।
3: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोबाइल रोबोट्स टू मेडिकल मिरेकल्स। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। सर, हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे रोबोटिक्स फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए?
2: मेन जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग है, उन्हें C++ और पाइथन लाजमी आनी चाहिए। लेकिन अगर आप फुली आना चाह रहे हैं तो एम्बेडेड सिस्टम, सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम्स और AI की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा के टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि रोबोटिक्स मतलब सिंपल एक फील्ड नहीं है, इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी। तो एक बंदा स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहा होता, मल्टीपल पीपल डिफरेंट डिसिप्लिन के काम कर रहे होते हैं।
1: और सर, टीम वर्क होता है।
2: टीम वर्क लाजमी जरूरी है और कोलैबोरेशन ताकि अच्छी हो। और लर्निंग के लिए कि आप ओपन सोर्स बहुत अवेलेबल है, आप उस पर लर्निंग करें और एक थोड़े से प्रैक्टिस कर लें तो उसका आप इजीली फील्ड में एंटर हो सकते हैं।
1: सर, अगर हम दुनिया में देखें तो रोबोटिक्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस फील्ड में काफ़ी पीछे है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है?
2: इसकी मेनली टू रीजंस है। नंबर वन तो ये है कि फंडिंग बहुत शॉर्ट है, क्योंकि रोबोटिक्स इज एक्सपेंसिव फील्ड। आपने कोई भी रोबोट बनाना है, आपको सेंसर्स चाहिए, मोटर्स चाहिए, फिजिकल मैकेनिकल डिज़ाइन बनाना है, इन सब के लिए आपको पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे। तो सारा का सारा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट आपको पता ही है पाकिस्तान, और जिस तरह की हम रोबोटिक्स में सेंसर वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए आपको बाद दफ़ा तो परमिशन भी लेनी पड़ती है कि भाई हम ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेंसिव बहुत है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो मेन रीज़न यही है कि फंडिंग ही नहीं है और बच्चे काम ही नहीं इस साइड पे फिर आते ही नहीं है कि हम बना ही नहीं पाएंगे, हमें फंडिंग कौन देगा। तो उस पर रिसर्च भी कम हो जाती है। और मेनली अगर हम पूरा रोबोटिक्स की बात करें तो बहुत ही कम डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रॉपर रोबोटिक्स पे काम करवा रहे हैं।
1: जी,
2: अगर आप अभी UCP की बात करें, उन्होंने बताया था कि सिर्फ एक रोबोटिक आर्म उन्होंने इंपोर्ट किया है और उसमें पता नहीं मंथ्स लग गए थे।
1: जी,
2: तो ये मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसकी जो इस पे वर्किंग और रिसर्च जो है वो काफी स्लो है।
1: सर, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान क्यों रोबोटिक्स की फील्ड में पीछे जा रहा है, कौन कौन सी रीजंस हैं, कोई फ्यूचर आपको नजर आता है रोबोटिक्स का पाकिस्तान में, कोई अपॉर्चुनिटीज हैं इस लिहाज से?
2: अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग नहीं हो रही है, तो अगर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्कोप है ना, क्योंकि अभी जो रिसेंट स्कोप बढ़ रहा है वो आपका मेडिकल में, हेल्थ और एग्रीकल्चर में और सिक्योरिटी में रोबोट्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान में यूज़ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम इंडस्ट्री और एजुकेशन के कोलैबोरेशन करें तो, और ये थोड़ा सा हमारा फंडिंग का इशू रिजॉल्व हो जाए तो बच्चे तो करना चाह रहे हैं, मैंने देखा है बहुत से इंटरेस्टेड होते हैं।
1: जी, स्टूडेंट का बहुत इंटरेस्ट है,
2: इंटरेस्ट होता है, तो वो बहुत स्कोप है इसका। मतलब सिर्फ रिसोर्सेज का थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि कमी है, अदर सिर्फ वो पूरे हो जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, हर जगह यूज कर सकते हैं।
1: आपके ख्याल में गवर्नमेंट को फंड देने चाहिए?
2: बेसिकली तो गवर्नमेंट को ही फंड, जहाँ जितनी भी बाहर आप जितनी भी यूरोप में, बकायदा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है जो कि सोसाइटी ड्रिवन रोबोट्स बना रहे हैं, और वो सिर्फ एक कंट्री नहीं है, पूरे यूरोपियन यूनियन में इस पे काम हो रहा है, और वो इतनी ज़्यादा फंडिंग दे रहे हैं डॉक्टर्स को कि आप ये वाला रोबोट बनाएं, इस तरह के रोबोट्स बनाएं। वहाँ स्पेशल सिर्फ सर्टेन टाइप ऑफ लैब्स ही क्रिएट हैं अदर देन यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ पर्टिकुलर रोबोट्स बना रही हैं, और वहाँ पे वो कोई और आके काम नहीं कर रहा है, स्टूडेंट ही जा रहे हैं, एज अ PhD स्टूडेंट, एज अ मास्टर स्टूडेंट जाके वहाँ पे वो रोबोट्स वहाँ पे बना रहे हैं।
1: पर अपॉर्चुनिटीज
2: हैं इतनी सारी, हाँ, पाकिस्तान में नहीं बना रहे क्योंकि पाकिस्तान में फंडिंग ही नहीं है, उसकी कोई सपोर्ट करेगा तो वो उसको ऑब्वियसली बात आगे लेके जाएंगे।
1: जी, ऐसे ही है। सर, आपने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, हमारे सुनने वालों को आप कोई अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा जो आप उनसे शेयर करना चाहें?
2: जितने भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं कोई ना कोई लाजमी आपके साथ ऐसा इवेंट होता ही है जिसमें कि आपको हमेशा याद रहता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो रोबोट्स में रिलायबिलिटी, जैसे आपने हमने पहले ही बात की, जिसका रोबोट सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा ना वो हमेशा कोई ना कोई पोजीशन ले जाता है। बेशक वो उतना फास्ट हो या ना हो। तो मैं अपने बैचलरी की बात करेंगे कि हमारे कंपटीटर रिपोर्ट्स थे वो बहुत अच्छा था, वो भी और हम भी। बस ये था कि हमारा रिपोर्ट थोड़ा सा स्लो था, पर हम कहने के मैं 100 टाइम्स चलाएं तो भी 99 टाइम्स वो एक्यूरेट चलता था। उनका ये था कि हमने उन्हें देखा था कि वो कह लें कि 70% चलता था, 30% ना एक जगह जाके प्रॉब्लम कर जाता था। अब जब कंपटीशन आया तो उनका होता है कि वो टॉस करते हैं कि आपने किस अरीना पे प्ले करना है। 2 डिफरेंट अरीनाज होते हैं, सेम पाथ्स होते हैं
1: जी।
2: तो मैं ही टीम लीड था तो मैंने उन्हें देखा था कि इस पाथ पे उनका थोड़ा सा 70% सही नहीं चलता है, वो 70% चलता है थोड़ा करता है। तो मैंने, जबकि हमारा दूसरे पे स्लो था लेकिन एक्यूरेट था, ये मुझे डन था, मैंने टॉस जीत के उनको दूसरे वाले पे प्ले करवा दिया। अब जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ, अब उनका रिपोर्ट हमारे रिपोर्ट में तकरीबन ना कोई फुट का फासला होगा, वो 1 फुट आगे जा रहा था, जाते जा रहे हमारे। और वो था कि उसके बाद हमने सेमीफाइनल प्ले करना था
1: जी।
2: और वो नस्ट का, मतलब वो नस्ट का रिपोर्ट था, हम कॉम्फेट की तरफ से प्रेजेंट कर रहे थे, तो हम और वो पूरी नस्ट जो है ना उनको चेयर कर रहे थे। आखिरी तकरीबन 1 मीटर का फासला रह गया होगा, उनका रिपोर्ट जहाँ पे वो पंगा करता था उसने वहीं पर जाके स्टक हो गया, पूरा हॉल खामोश। और अभी हमारा रिपोर्ट कंप्लीट भी नहीं किया, हमारा उसे 1 फीट पीछे आ रहा है, हमारा पूरी टीम उछल रही है और हमारी जो हालत हुई हुई थी। वो यही था, मैं अभी भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ जो मेंटर करते हैं, कहते हैं कि बेसिक थोड़ा सा स्लो कर लें पर 100% चलना चाहिए।
1: सही बात है सर। अमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना तजुर्बा और इनसाइट हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसका मौका दिया एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड।
1: लिसनर्स, आज हमें समझ आया कि रोबोटिक्स इंसानी मदद के नए सफर का आगाज है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, अब बस, अब हमें और तुम्हें

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCT की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वसाइल और कुंबे के अफराद में तवाज़ुन, खुशहाल खानदान और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की जमानत है। मुतवाज़न खानदान की तश्कील के लिए जिम्मेदारी निभाएं, एतदाल अपनाएं।
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी, जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।
1: Are you tired of feeling lazy and bored?

0: FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: सामिन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूँ आपका मेज़बान अली अशरफ, और आप हमें सुन रहे हैं एफ़एम 92.6 पर, जिसे आप एंड्रॉयड की और आईओएस की ऐप के ज़रिए भी सुन सकते हैं। और हवा के दोष पर तो आपकी हमारी मुलाकात रहती ही है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से कम्युनिटी के, सोसाइटी के वो लोग जो कि शायद उतने कारामद नहीं समझे जाते कमाने के हिसाब से, वो किस तरह से कमा सकते हैं, और हमारी जो इकॉनमी है जो कि बड़ी इस वक्त सफ़र कर रही है और उसको ज़र मुबादला की बहुत ज़रूरत है, उसमें किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग और अपनी हालत भी ऑब्वियसली बेहतर कर सकते हैं। तो मैं ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि अमेज़ॉन के ज़रिए किस तरह से कमाई की जा सकती है, उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि फ्रीलांसिंग के कितने तरीकाकार हैं, जिनको और भी अमेज़ॉन के अलावा भी कुछ हैं, और क्या क्या तरीके हैं फ्रीलांसिंग के।
2: इसमें ये चीज़ है कि फ्रीलांसिंग में आपकी स्किल्स हैं, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई गिटारिस्ट है, ठीक है, उसके पास ये स्किल है तो वो इसको अपनी इस स्किल को अर्न कर सकता है। वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी को भी अगर ये उनको हायर करना है तो वो अपने आप को उस पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी फ्रीलांसिंग करते हो। और इसके अलावा आपका ये कैनवा भी बहुत बूम है उसका, कि किसी ने अपना यूट्यूब का थंबनेल बनवाना है या कोई भी कार्ड्स वगैरह बनवाने हैं, कुछ भी बनवाना है, तो वो आप उन, ये किसी के पास स्किल है वो उसको अर्न कर सकता है। इवन ईमेल एक स्किल है, किसी ने मेल्स के लिए किसी को हायर करना है कि हमारी कंपनी के आप ईमेल्स वगैरह सेंड करें,
1: जो ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस
2: कर सके, तो वो घर बैठ के आपका ये काम कर सकते हैं और इस पे अच्छी अर्निंग करते हैं। पाकिस्तान में शायद ये इतनी ज्यादा स्किल ना समझे जाए, लेकिन बाहर के मुल्कों में ये बहुत अच्छे स्किल समझे जाते हैं। इसकी रीजन ये है कि उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। अगर कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी बिजी बंदा जो अपने डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स को देख रहा है, तो वो अपने जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है और अपने बिजनेस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है, उसके लिए वो लोगों को हायर करता है। तो अब वो हमें पाकिस्तानियों को हायर कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे उतना पे नहीं करना पड़ता जितना यूएसए में उन्हें पे करना पड़ता है। तो ये रीजन है सबसे बड़ी। और
1: अच्छा, ये जो फ्रीलांसिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई भी स्किल है, लाइक कोई गिटारिस्ट है, कोई ईमेल की अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है या कॉन्टेंट राइटिंग कर सकता है, या जिस तरह आपने कैनवा की बात की कि ग्राफिक्स कोई बना के दे सकता है, थंबनेल बना के दे सकता है, इनके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर वो जाके ये काम कर सकते हैं।
2: फाइवर है, अपवर्क है, इवन आपका फेसबुक है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं जिसमें वो खुद को ऐड कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। फाइवर अपवर्क बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, आपको क्लाइंट अगर डिच करवा रहे हैं तो फाइवर ने आपको पे करना है, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और यहाँ से आप अपने क्लाइंट्स को भी ग्रैब कर सकते हैं।
1: अच्छा, जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ज़्यादातर इस वक्त हमें लेमैन सुन रहे हैं, यानी जो ख़वातीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटरनेट एक्सपोजर भी लिमिटेड है, या लिमिटेड से कह लें कि वो सिर्फ मोबाइल से कोई भी ऐप खोल लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस लेवल पर जाके आप हमें गाइड करें कि किस तरह से कोई अमेज़ॉन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है, तो उसके लिए 1, 2, 3 स्टेप्स क्या क्या हैं।
3: इसमें मेरा ख्याल है कि आपने सुना होगा, पहले वालदैन जो हैं वो बच्चे को मैट्रिक करने पे कहते थे कि आप ना डिप्लोमा कर लें कोई, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको डिप्लोमे की तरफ नहीं, आपको अब ई कॉमर्स के या फ्रीलांसिंग के किसी स्किल की तरफ आना चाहिए। आपको वहां से स्टार्ट लेना चाहिए। आपको मैंने पहले बताया जैसे कि स्कूल में हम बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हैं, उसके बाद आप जब मैट्रिक कर लें, आप डिप्लोमा की तरफ ना जाएं, आपको स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता आपको मार्केट प्लेस मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा स्किल्स मिलेंगे, आप उसमें आए, काफी अच्छा और काफी बेहतर होगा आप लोगों के लिए।
1: आप कुछ ऐड करेंगी इसमें सभी का कि क्या?
2: अच्छा, इसमें यही है कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं हम देखें सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे आप लोग फिर भी जिनकी बात करें वो कुछ ना कुछ उन्होंने स्टडी किया है। हमारे पेरेंट्स की कोई स्टडी नहीं थी, मतलब मेजॉरिटी पेरेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई, वो हमसे बार बार क्वेश्चन करते थे फेसबुक का कि ये यूज़ कैसे होनी है, और अब वो इतने एक्सपर्ट हैं कि शायद उनको वो चीज़ें पता हैं जो हमें भी नहीं पता। तो एक स्टेप होता है जो आपने लेना होता है, ठीक है, आपने एक सबसे पहले तो है कि फैसला करना है कि हमने ये काम करना ही करना है. जब आपने ये डिसाइड कर लिया, डिसीजन आपने बना लिया और आप इसमें इन हो गए, तो रास्ते आपके सामने खुद ही खुलते जाएंगे. स्टार्ट में इवन हमें ये बहुत ज्यादा मसला हुआ था कि इसमें देखें 100+ इनकम स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, फ्रीलांसिंग है, अमेज़न है, अमेज़न में फर्दर 4 मतलब उसकी मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, आर्बिट्राज है. तो उसमें हम हर किसी से पूछते थे, हेल्प लेते थे, भाई बता दो क्या करें क्या करें, जो जिस तरफ कहता था हमें वहां जाना होता था. तो इसलिए अब उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम बंदे से मतलब यही देखते हैं कि यार बंदे का इंटरेस्ट किस चीज़ पे है. ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है आप उसकी बेस पे काम करो, नहीं भी है तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा. जब आपको पता होगा ना कि यार डॉलर्स में पे आनी है, अच्छी अर्निंग होनी है, तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा और आप उसमें इन हो जाओगे. स्टार्ट में इनिशियली आपको इसका नॉलेज लेना है अच्छे से कि ये बेसिकली कि आपको स्किल सीखना लाजमी है. आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए ये नहीं कर सकते कि मैंने सीखा नहीं है और डायरेक्ट मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दूं. आप किसी का लॉस कर रहे हो. आपने लॉस नहीं करना, आपने पहले स्किल को ग्रैब करना है अच्छे से, आपने वो सीखना है, अपना हाथ उस पर सीधा करना है. उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये कि क्लाइंट तो आपको बहुत मिल जाएंगे. मेरे हस्बैंड अवैस एक बात करते हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान भी अमेज़न का स्किल सीख लेना
3: नहीं,
2: जी नहीं, अभी तो मैंने इन्हीं से सुना है तो मैं इनको रेफर किया कि अगर पूरा पाकिस्तान भी सीख जाए ना तो पोटेंशियल ख़त्म नहीं होगा. क्योंकि यूएसए में बहुत बहुत इन्वेस्टर बैठा हुआ है और इवन जब से अमेज़न ने पाकिस्तान को अलाउ किया है ना कि पाकिस्तान भी आपकी जो है अमेज़न पे सेल कर सकता है, तो तब से तो मतलब यह कि आपके क्लाइंट्स पाकिस्तान से भी बहुत निकल रहे हैं. अभी एक साल हुआ है कि अब आप यहाँ, यानी कि मैं उन लोगों के आप जिनकी स्टूडेंट्स की बात करें, मैं इवन इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगी कि आप यहाँ पे लोग परेशान होते हैं हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें. ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में अपना बिजनेस कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप वहां पे जाओ, आप यहाँ बैठ के अपनी वहां पे LLC बनवा सकते हैं और वहां पे अमेज़न के थ्रू आप यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं. अमेज़न पे चीजें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं यहाँ बैठ.
1: अच्छा, सभी का मेरा सवाल, आपने बड़े अच्छे इसको एलैबोरेट कर लिया. मेरे का सवाल ये है कि किसी ने ले मैन ने स्टार्ट करना है, जो हमारे लिसनर हैं वो उस वक्त जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए पहला स्टेप क्या है, क्या करें, वो कोई ऐप खोलें, कोई इंटरनेट पे सर्च करें, क्या करें फर्स्ट स्टेप?
3: उसके लिए ये है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 ग्रुप्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस लगाई हैं, वहाँ जा सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, आप वहाँ जाके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको पे करना पड़ेगा फीस 2 मंथ की, वो आप पे करें और सीखें.
2: मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये फीस नहीं होगी, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी,
3: फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है ये.
1: बिल्कुल ठीक है,
3: आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा. मतलब कि ये नहीं है, अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है ना, उसके पास स्किल है, कल को वही स्किल आपके पास भी होगा, तो जहरी बात है वो फिर रोटेट होगा, आप भी कमाएंगे. आप, मैं वही बात है कि पूरा पाकिस्तान इस पे लग जाए, पोटेंशियल बहुत है, बहुत कमाई है, सारा पाकिस्तान.
1: यानी काम इतना ज्यादा है कि हमारी 22 करोड़ आवाम अगर इसको, 22 करोड़ के 22 करोड़ एम्प्लॉयड हो सकते हैं
3: सर, लग जाएं इस पे.
2: स्किल कभी भी ज्यादा
3: नहीं, आप किसी के मुलाजिम नहीं होंगे. ठीक है, आप खुद मुख्तार होंगे, आप अपनी मर्जी से काम करेंगे और घर बैठ के काम करेंगे. आप अगर शोहर भाई रहना तो वो बैक एंड पे आपकी बीवी जो है ना वो आपके लिए काम कर रही है. ठीक, आपको कोई टेंशन नहीं. अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं ना, तो बीवी घर बैठ के, आपने टास्क दे दिया बीवी को, वो बीवी बैठ के काम कर रही है आपका, आपको टेंशन कोई नहीं है. पूरे पाकिस्तान को चाहिए जितना हो सकता है आप ई कॉमर्स में, फ्रीलांसिंग में इन हो, यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर आपका काम आएगा. स्टार्टिंग कहाँ से लेनी है? स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट है, आपको वहां स्टेप लेना पड़ेगा, आपको वहां सीखना पड़ेगा. वहां से आप स्टार्ट लेंगे, 2-2.5 माह वहाँ सीखेंगे, उसके बाद 3-4 माह आप एज इंटर नहीं लगाएं, आपका जो काम है वो इसी तरह ही आगे.
2: इसमें ये चीज है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं जिधर आप ये सर्विसेज वगैरह ले सकते हैं, और उसमें जो भी लाइक वही बात है कि इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की, इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस कि आप एक स्किल सीख रहे हो, स्किल कभी भी जाया नहीं जाता. ठीक है,
1: जिस तरह बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि जिस तरह हम जब हमें लिखना पढ़ना नहीं आता तो हम स्कूल जाते हैं और वहाँ से वो स्किल एक्वायर करते हैं, इसी तरह जो प्रोफेशनल स्किल्स है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं और वहाँ से स्किल एक्वायर करते हैं, और स्किल एक्वायर करने के बाद वो फिर प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं. तो सबीका और अवैस, अभी हमारा प्रोग्राम में वक्त हो रहा है म्यूज़िक ब्रेक का, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पूछेंगे कि अमेज़न की कौन कौन सी स्ट्रीम में आपने काम किया और उनसे क्या क्या लर्निंग है, और जो लोग काम उस स्ट्रीम में करना चाहते हैं वो क्या क्या गलतियां हैं जो आपने की हैं और वो अवॉइड करें और उसके ज़रिए वो अपना जो लर्निंग है उसे इम्प्रूव कर सकें। लेने जा रहे हैं म्यूज़िक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम ये चीज़ें सब डिस्कस करने वाले हैं।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें
3: खबरदार छूना।

0: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
1: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राबता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.pk पर चेक करें।
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention?

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: Station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ, डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
2: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
3: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस,

0: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।
1: Are you tired of feeling lazy and bored?

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमने बात की लिटरेचर पे, कल्चर पे, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि तिमसाल निखत चौधरी से डांस भी सीख रही हैं। तिमसाल सबसे पहले तो ये एक बहुत हमारे मुआशरे में एक बहुत और चीज समझी जाती है कि डांस को, ठीक है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इस मुआशरे में जहाँ पे इसको अच्छा नहीं समझा जाता और बहुत बुरी राय भी है, तो आपको क्यों लगा कि मैं ये सीखती हूँ और फिर मैं ये करूँगी?
1: तज़ीन, इसका जवाब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से देती हूँ। हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो उसमें एक बहुत ही टैंजिबल एविडेंस है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, उसमें आपको टैंजिबल एविडेंस मिलता है ऑफ अ डांसिंग गर्ल। इट मीन्स कि डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स इन जनरल इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी इट्सेल्फ। इसका मतलब है कि डांस और द वेज ऑफ एक्सप्रेशंस, वेज ऑफ कैथारसिस ऑफ मैन हैव बीन एग्जिस्टिंग सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इट्सेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग एज इंडिजिनस, एज इंटरनलाइज्ड टू ह्यूमन बींग्स इट्सेल्फ, उसको बुरा क्यों समझा जाता है अभी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा मसाइल है। कमिंग टू माय इंस्पिरेशन एज अ डांसर, आई थिंक आई वाज़न्ट एक्सपोज टू सो मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर आई स्टार्टेड डांसिंग। तो डांस जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया तो तब मुझे पता चलना शुरू हुआ कि पीपल आर वेरी रिलक्टेंट टूवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर मैंने इन मसाइल के बारे में पढ़ना शुरू किया। मेरी जो गुरु हैं निखत चौधरी, उन्होंने उनके काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं इस पर, शी रॉट अ लॉट अबाउट इट, और दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि शी केम टू पाकिस्तान एंड स्टार्टेड डांसिंग हेयर, क्योंकि वो लोगों को इससे फेमिलियराइज करवाना चाहती थी और एक्सपोज करवाना चाहती थी। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन पीपल इंडिजिनसली हेयर इज द लैक ऑफ एक्सपोजर टूवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स।
0: अच्छा, इसमें ना एक चीज़ है, अभी मेरे पास लास्ट गेस्ट थी, उन्होंने भी ये बात की कि जब हमने बुक फेयर्स की बात की ना, वो रिपोर्टर थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ना ज्यादातर जो आवाम है ना, वो सिर्फ पिक्चर्स के लिए और इंस्टा स्टोरीज के लिए आती है। अब अगर हम यहाँ पे इस बारे में भी बात करें ना, डांस के बारे में स्पेशली, या क्लासिक डांस के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे आप क्लासिक डांस की तरफ आपका फोकस है, तो इसमें भी दो राय हैं। या तो एक अवाम वो है जिसको बहुत ज्यादा कूल समझती है, और एक अवाम वो है जो जिसकी इसके बारे में बहुत ही सख्त राय है, मतलब बहुत ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी करती है। तो आपको भी लगता है कि जिस अवाम का इसके बारे में एक्सपोजर नहीं था, अवाम नहीं कहेंगे, क्लास कह लेंगे या एक तबका कह लेंगे, उन्होंने कूल बनने के चक्कर में इसको थोड़ा सा खराब किया?
1: अच्छा, पहली चीज़ ये है कि क्लासिकल जो आपने टर्म बोली, मैं पहले भी इसको डिफाइन कर चुकी हूँ। क्लासिकल कोई भी चीज़ होती है, जैसे क्लासिकल डांस है या क्लासिक्स आप वैसे लिटरेचर में देखते हैं, इट्स समथिंग दैट इज़ टाइमलेस, इट हैज़ सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम, और ये काफ़ी एक लंबी लेगेसी लेके चलती है और टेस्ट ऑफ टाइम को सर्वाइव करके एक टच स्टोन बनती है एट द एंड ऑफ द डे, एक स्टैंडर्ड बनती है। There's a reason that it is a classical dance, and there's a reason that there's a technique to it. So a lot of people, jinko ab dance ki na ek specific, this might be new for a lot of people, theory hoti hai, you study dance as well. ठीक है, तो डांस का एक प्रॉपर सिलेबस है। तो जब आप उस सिलेबस से दूर जाते हैं या टेक्निक से दूर जाते हैं, तो तब आप कूलनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप उसको अपनी परसेप्शन, अपनी अंडरस्टैंडिंग के जरिए लेके चल रहे होते हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। दूसरे, आपने बात की कि एक मेजर तबका जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग से दूर है, तो उसकी क्या वजह है या वो क्यों दूर है? मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वो काफ़ी कंटेस्टेड हो गया है, काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक क्लास को हमने खुद एक स्पेसिफिक पेडिस्टल पे बिठाया है कि आप कल्चर के या आर्ट के कर्ता धरता हैं, यू आर द फोर फादर्स, आई डोंट नो, और आर्ट को आपने संभालना है। तो आर्ट बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड हो गई है टू द अपर क्लास ऑफ पाकिस्तान, और आई थिंक आर्ट को इंडिजिनाइज या कल्चर को इंडिजिनाइज करने की ज़रूरत है। अब इंडिजिनाइजेशन का मतलब यह, अब कथक जो वर्ड है वो कथा से निकला है, इसका मतलब होता है स्टोरी टेलिंग।

0: आर्ट को इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलने की जरूरत है और स्पेसिफिक क्लास से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि जो लोअर क्लास है उसका एक्सपोजर बढ़ सके.
1: बिल्कुल ऐसे ही. आपको लगता है कि ऐसे जो हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं इनको ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहिए?
0: मैं इसी पे ही बात करना चाह रही थी. जैसे मैंने पहले बात की कि कल्चर के कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं चीज़ों को इंटरनलाइज करवाने के, उनको नॉर्मल बनाने के, क्योंकि कल्चर कैन नॉट बी स्टैटिक, इट हैज़ टू बी मूविंग, इट हैज़ टू बी इवॉल्विंग ऑल द टाइम. तो इसका एक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि आप डांस को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, या जिस चीज़ को, अच्छी चीज़ को आप इंटरनलाइज करवाना चाह रहे हैं उसको आप एकेडेमिकली लेजिटिमेट कर दें, उसको लेजिटिमाइज कर दें एकेडेमिकली, उसको एकेडेमिक लेजिटिमेसी दे दें. सो फॉर इंस्टेंस काफी ज्यादा स्कूल्स में करंटली डांस पढ़ाया जा रहा है. इवन निखत चौधरी जो हैं वो हबीब यूनिवर्सिटी में, शी हैज ट्रेस्ड अप द सिलेबस ऑफ डांस एंड थिएटर और वो बाकायदा स्टूडेंट्स को एज कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है. लेकिन ये काफी हायर लेवल पे हो रहा है. आई थिंक बहुत शुरू से ही इंटरनलाइज करना चाहिए इन द स्टूडेंट्स, दे शुड हैव एन इंक्रीज्ड एक्सपोजर टुवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स एज़ वेल.
1: बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, अब चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है तो आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि आप लिखती भी हैं एज एन राइटर. अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बताया कि एज एन डांसर भी बता दिया, एज एन आर्टिस्ट भी बता दिया, एज ए राइटर आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा?
0: सो बेसिकली व्हेन आई राइट, आई थिंक मॉडर्न जो जनरेशन है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि दे राइट लिटरली एनीथिंग और विदाउट एनी एकेडेमिक रिसर्च और विदाउट एनी एक्सपोजर टू लिटरेचर.
1: बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया
0: कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, उनका एक्सपोजर कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, और अगर आप लोकल लैंग्वेजेस में लिखें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है. तो लोग, क्योंकि ये एक नॉर्म नहीं बन रही, तो लोग रोज़ बरोज़ इससे दूर जाते जा रहे हैं. दे थिंक कि राइटिंग जो है, क्योंकि अब देखें राइटिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. आप लिखना कोई आसान काम नहीं है. तो जो वाकई में लिखते हैं उनको पढ़ा नहीं जाता, तो जो
1: वहाँ से डीमोटिवेट हो जाते
0: हैं. डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो जो लिखना चाहते हैं उनको इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है, मीडियम्स नहीं है जिनके जरिए वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके.
1: थैंक यू सो मच तिमसाल, आप आई, आपने वक्त निकाला और हमारे सामने ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा. और थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच तहज़ीन फॉर हैविंग मी. आई हैड अ लॉट ऑफ फन.
1: आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए FM 92.6 UCP.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Admissions open for fall 2026. Create, communicate and inspire with Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab. We are offering MS Film and Digital Media, MS Advertising in PR, MPhil Media and Communication. We are also offering different scholarships for UCP alumni, 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.5 CGPA, 25% fee concession on 3.0 CGPA. Merit scholarships are also available. 75% fee concession on 3.8 CGPA, 50% fee concession on 3.6 CGPA, and 50% fee concession for teachers and media professionals. So what are you waiting for? Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucp.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: Drono. बोरियत को भगा दो।
1: Oh,

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सर्जिकल रोबोट प्रिसीजन के साथ ऑपरेशन करते हुए इंसानों की मदद कर रहा हो? ये कोई दूर का ख्वाब नहीं बल्कि आज की हकीकत है। मोबाइल रोबोटिक्स और मेडिकल रोबोटिक्स की दुनिया हर दिन नए रास्ते और नए मौके खोल रही है। जहां मोबाइल रोबोट्स मुसीबत ज़दा इलाकों में रेस्क्यू करते हैं, वहां मेडिकल रोबोट्स सर्जरीज और रिहैबिलिटेशन में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। हर नए प्रोजेक्ट के साथ रोबोटिक्स जिंदगियों को बेहतर और महफूज बना रही है। लेकिन जैसे हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, रोबोटिक्स के साथ भी कुछ चैलेंजेस सामने आए हैं, जैसे सिस्टम एक्यूरेसी, सेफ्टी और एथिकल कंसर्न्स। आज के प्रोग्राम में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोबोट सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानी मददगार बन के सफर कैसे तय कर रहे हैं। और इस सफर में हमारे रहनुमा होंगे अमार हसन साहब, रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट सिस्टम के एक्सपर्ट और रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन के मेंटर। तो चलिए रोबोटिक्स और इंसानियत के इस इंटरेस्टिंग सफर का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम सलाम,
2: कैसे हैं सर आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: चले सर, वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने सवालात का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि रोबोटिक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे आप?
3: एक्चुअली रोबोटिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जो असल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड AI का कम्बिनेशन है। बेसिकली इसका गोल ये है कि आप ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स डेवलप करें जो कि इंडिपेंडेंटली, या हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमंस के साथ उनकी हेल्प करें। और ये रोबोटिक्स सिर्फ मैकेनिकल आर्म्स या हम कह सकते हैं कि ऑटोनोमस कार्स तक महदूद नहीं है। बेसिकली इसमें मेडिकल रोबोट्स आ जाते हैं, ड्रोन्स हैं, माइंड रोबोट्स हैं, AI असिस्टेंट्स हैं। इसकी फील्ड बहुत आगे तक बढ़ गई हुई है। आज रोबोटिक्स ना सिर्फ इंडस्ट्री में बल्कि हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, मिलिट्री और आपकी हर डेली लाइफ में इंटीग्रेट हो चुका है।
2: सर, आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था और आपको ये शौक किस तरह पैदा हुआ कि आप रोबोटिक्स की फील्ड में काम करें?
3: मुझे सबसे बेस्ट पता नहीं कि मुझे इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ तो आई वॉज इन बैचलर्स इन फोर्थ सेमेस्टर। उस टाइम हमारे एक टीचर थे जो कि हमें रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने हमारे सेमेस्टर के एंड पर एक प्रोजेक्ट रखा जिसमें हम पूरी क्लास ने ग्रुप्स में रोबोट्स बनाने थे। तो जब फर्स्ट टाइम हमने रोबोट वहाँ पर बनाया तो दैट वाज द टाइम के, मतलब हम पहले तो ये था कि हम सॉफ्टवेयर पे सब कुछ कर रहे थे जी, हम प्रोग्रामिंग की हमारे पास आउटपुट आ गई दैट्स इट। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम हमने इंटीग्रेट करके जब रियल में जब रोबोट चलता है ना
2: सामने,
3: वो तो फीलिंग है वो, मतलब वो बयान ही नहीं की जा सकती। मतलब वो जो सेल्फ अचीवमेंट और मतलब वो आपको फिजिकली जो चीज़ नज़र आती है ना, वो इस सॉफ्टवेयर में उस तरह फीलिंग नहीं आती। तो फिर उसके बाद हमने एक टीम बना ली जिनका इंटरेस्ट था। और मजे की बात यह कि उस दफा मेरा प्रोजेक्ट चला ही नहीं था, उसके बाद ही
2: डिफरेंट हुआ।
3: यस हाँ, उसके बाद ही बेसिकली हमारी स्टोरी रिपोर्ट्स की आगे शुरू हुई।
2: अच्छा सर, आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, किस तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं?
3: इनिशियली तो हम स्मॉल लेवल कॉम्पिटिशन्स में गए थे जिसमें सिंपल कोई पाथ को फॉलो करना है या एक सर्टेन एरिया को कवर करना है। बट इवेंचुअली जब आप जब हायर लेवल रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो वहाँ एक प्रॉपर थीम होती है जिसके मुताबिक या एक प्रॉपर टास्क होता है। तो स्टार्ट में सबसे पहले हम जीकी गए, वहाँ पर हमने लाइन फॉरवर्ड कंपटीशन किया, हमारी सेकंड पोजीशन आ गई, तो उससे हमें बहुत बूस्ट मिला, हमारे सुपरवाइजर ने भी बहुत हमें मोटिवेट किया
2: जी।
3: तो जैसे ही भी उसके बाद फास्ट भी गए, उसके बाद नस्ट गए, फिर हमारा एक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोबोटिक कंपटीशन है नेशनल इंजीनियरिंग रोबोटिक कंपटीशन NERC, फिर हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ बेसिकली थीम ये था कि आपके पास मल्टीपल रोबोट्स थे, आपके पास नहीं कंपटीशन होता था कि टू साइडेड प्लेटफॉर्म था, एक साइड पे आप हैं, एक साइड पे दूसरा ओपोनेंट है। तो उसमें ये होता था कि आपने थीम थी कि आपने मल्टीपल कलर्ड बॉल्स को, या आप उसको आप कह रहे हैं कि फ्रूट्स को, जो कि डिफरेंट फ्रूट्स हैं, उनको उनके रिस्पेक्टेड बॉक्सेस में डालना है और आपने मल्टी पाथ को फॉलो करते हुए जाना है। हो सकता है कि एक पाथ बंद हो तो वो दूसरे पाथ से जाए
2: जी।
3: तो इस तरह पॉसिबल कोई 90 कॉम्बिनेशन हमारे पास थे और हमने वो सारे क्रिएट किए हमने आर्टिफिशियली, और उसके बाद हम उसमें माशाल्लाह हमारी सेकेंड पोजिशन आ गई,
2: जबरदस्त,
3: और बेस्ट इंजीनियर डिजाइन अवार्ड भी मिला हमें। तो उससे तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ही हाई हो गया था। तो ये हमारा एक है, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े हम कंपटीशंस में जाते रहे क्योंकि इससे मोटिवेशन और हाई हो गई। फिर हम पंजाब यूथ फेस्टिवल ऑन रोबोटिक कंपटीशन कराया, फिर हम वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी हमारी पोजीशन आई। तो बस वो कह रहे हैं कि
2: सिलसिला चलता जा रहा,
3: सिलसिला चलता रहा हमारा।
2: सर, इन रोबोट्स को बनाने में कितना टाइम लग जाता है?
3: ये इट डिपेंड्स कि कितना बड़ा टास्क है या हमारा फिजिकली क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। तो अगर तो जैसे हम NERC गए थे तो मिनिमम आपको 2 से 3 मंथ्स तो लगते ही हैं कॉन्टिन्यूसली, मतलब फुल टाइम मेहनत है। और इसके अलावा अगर आप पहले शुरू करते हैं तो आपको ज़रा अच्छा बेटर रिस्पांस मिलेगा। बेसिकली हमने उसको फुल टाइम बनाना है
2: जी,
3: तो उसकी टेस्टिंग होती है, फिर बीच में अगर कोई इशूज आ जाते हैं उनको रिजॉल्व करना है, मैकेनिकल डिज़ाइन है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है, फिर कोडिंग है, तो टाइम बहुत लगता है इसमें।
2: अच्छा सर, आप ना सिर्फ खुद रोबोट्स बना रहे हैं बल्कि स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में उनको मेंटर भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं कि ये तजुर्बा कैसा रहा आपका?
3: जो मेंटरिंग स्टूडेंट्स है रोबोटिक में, एक बहुत रिवार्डिंग तजुर्बा है और था भी, मैं करंटली भी कर रहा हूँ। उसमें यह है कि हम उनको ना हर चीज में गाइड कर रहे हैं कि मतलब मैकेनिकल डिजाइन किस तरीके से सबसे बेस्ट हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रिकल या हम किस तरह से सिस्टिफिकेटेड डाल सकते हैं, या हमारा उसका किस तरह का एल्गो डिज़ाइन करना है। और बात यह कि हम जब भी डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं तो हर एक की अप्रोच वर्किंग डिफरेंट होती है, मे बी एक ही प्रॉब्लम है बट दे गिव मल्टीपल सॉल्यूशंस, और इससे बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है आपकी भी। और हमने तो इतना मतलब कंपटीशंस और बोर्ड्स बना लिए हैं कि हमें जो बेसिक बच्चों को इम्प्रूवमेंट में लर्निंग आती है ना कि अब ये करेंगे तो होगा क्या, वो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, तो हम उनको ये चीज़ गाइड कर देते हैं और वो आगे इससे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है।
2: ऐसे ही है सर। सर, सुना है हमने कि आपने एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताइएगा।
3: एक्चुअली जब मेंटरिंग स्टार्ट की मैंने स्टूडेंट्स को NERC गया, वहाँ पर हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन आ गई थी, तो फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि OIC इंटरनेशनल लेवल पर रोबोटिक कंपटीशन करा रहे थे जिसमें 55 इस्लामिक कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। हमने उसके अंदर, उसमें ये था कि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 2 टीम्स ने सिलेक्ट होनी थी जो कि अच्छी टीम्स हों
2: जी।
3: तो ऑलरेडी हमारी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी प्रीवियस 2-3 ईयर्स से, तो फिर हम सिलेक्ट हो गए और वहाँ जाके फिर हमने रोबो वार और रोबो फुटबॉल 2 कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और जो रोबो फुटबॉल है उसमें हमारी सेकंड पोजीशन आई और हमने $2,000 विन किए।
2: सर, आपने पाकिस्तान में भी बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी किया, तो जब हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा किस बात ने मुतासर किया या इंस्पायर किया? अगर आप देखें बाहर जाके क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ?
3: सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है कि मतलब आप 55 डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से आप मिल रहे हैं
2: जी,
3: जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, उनकी टेक्निकल स्किल्स भी डिफरेंट है, ठीक है। हमारे पास सबके पास प्रॉब्लम क्या है सेम, और आप यकीन नहीं करेंगे कि कह रहे हैं कि 55 के 55 डिफरेंट सॉल्यूशंस लेकर आए, हर एक डिजाइन डिफरेंट है, हर एक की थिंकिंग डिफरेंट है, यानी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि जितना लर्न आई थिंक मैंने पाकिस्तान में नहीं किया जितना मैंने वहाँ वन इवेंट में कर लिया, उनसे बात करके, उनकी थिंकिंग के, उनके कोलैबोरेशन से। आई थिंक हमें कुछ ज़्यादा लर्निंग करनी है तो हमें ज़रूर इंटरनेशनल ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि बाकी कंट्रीज किस स्टेज पर हैं और वो किस तरह से सोच रहे हैं।
2: जी लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोबाइल रोबोटिक्स टू मेडिकल मिरेकल्स और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी सर, आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि रोबोटिक्स की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बहुत सी हैं, सबसे सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन कौन सी है?
2: रियल वर्ल्ड में रोबोटिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, मतलब और हर जो एप्लीकेशन है वो मतलब सिग्निफिकेंट ही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरे ख्याल से हेल्थ केयर जो है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मुझे उस तरह सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है। उनमें सबसे बेस्ट है रिहेबिलिटेशन रोबोट्स हैं, वेरिएबल रोबोट्स हैं, टेली प्रेजेंस रोबोट्स हैं, प्रोस्थेटिक्स हैं जैसे कि रोबोटिक्स आर्म्स एंड लेग्स एंड प्रोस्थेटिक फुट्स हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट्स हैं, लेबोरेटरी रोबोट्स हैं जो कि सैम्पलिंग करते हैं और मल्टीपल ऐसी मेडिसिंस बना रहे हैं जो कि ह्यूमंस नहीं बना सकते हैं और सैम्पलिंग ले भी रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी सैम्पलिंग्स हैं, और डिसइंफेक्टेंट रोबोट्स हैं जो कि एरिया को डिसइंफेक्ट कर देते हैं जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते हैं, और सर्विसेज रोबोट्स हैं, नर्स रोबोट्स हैं, और हद तक नैनो रोबोटिक्स भी हैं कि छोटे रोबोट्स जो कि डायरेक्टली आपके पर्टिकुलर ऑर्गन तक ड्रग डिलीवर कर देते हैं, और बता के डायग्नोसिस के लिए भी हम वो नैनो रोबोटिक्स यूज कर रहे हैं। तो मेडिकल में इसकी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन हैं, काउंट नहीं कर सकते आप।
1: सर, आप अभी मेडिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, आपने खुद भी इस डोमेन में कोई कंट्रीब्यूशन किया है?
2: यस, मैंने प्रोस्थेटिक फुट बनाया था कि हमारी बेसिकली वो इंस्पायर ये हुआ था कि हमारे जितने भी मोस्टली जो प्रोस्थेटिक फुट यूज कर रहे हैं वो आर्मी पीपल यूज कर रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी
1: इंजरीज
2: तो उनकी लेग्स और फुट इंजर हो जाते हैं, तो फिर उनको तो अभी तक वो क्या यूज कर रहे हैं, वो सिंपली वुड का बना हुआ यूज कर रहे होते हैं, तो वो काफी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फुट। तो वर्ल्ड तो इस चीज में बहुत आगे जा चुकी है, और वो अगर आप फुट एक फुट भी आप इम्पोर्ट करें तो मैं भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई नॉर्मल पीपल,
1: ऐसे ही है।
2: तो वो हमने उनके ही वहाँ से हमने उनके जो प्रैक्टिकल उनकी लैब्स थी वहाँ से हमने उनके लिए कार्बन फाइबर का फुट तैयार किया क्योंकि उसका वेट सबसे लेस होता है, और उसके डिजाइन में हमने सारी मदद की, और फिर ये था कि जिसका फुट नहीं है तो हम उसके अपर लेग पार्ट से सेंस करके सिग्नल्स को और फुट को जैसे ह्यूमन गेट जैसे ह्यूमन चलता है उस हिसाब से फुट की मूवमेंट कर रहे थे, यानी कि पूरे पाकिस्तान में वो पहला प्रोजेक्ट था, और फिर हम उसी को लेके हम एप्टिका श्रीलंका गए, वहां पे भी हमारी फर्स्ट पोजीशन आई,
1: जबरदस्त,
2: और उस टाइम ये नस्ट और पाकिस्तान का फर्स्ट रोबोट था, तो हम बहुत एक्साइटेड थे जब कहता कि पूरे नस्ट ने भी इसको हम बहुत अप्रिशिएट किया और उसको वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं।
1: जबरदस्त। सर, आपने अभी मेडिकल रोबोटिक्स की बात की है, क्या ये सिर्फ हॉस्पिटल्स तक मौजूद है या घरों तक भी पहुँच गई है?
2: नहीं, रोबोट्स तो अब वाकई सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं है, हम जो जितने भी यूरोप और हाई एंड कंट्रीज हैं वहाँ पे रोबोट्स घर में भी हैं, एज अ सर्विस भी यूज कर रहे हैं, एज अ वेरिएबल रोबोट्स भी यूज हो रहे हैं, मतलब जिनको चलने या फिरने में इशू आता है तो वो उनके लिए वेरिएबल रोबोट्स हैं, रिहेबिलिटेशन रोबोट्स यूज हो रहे हैं वो इसलिए कि अगर किसी को इंजरी हो जाए तो रिकवर करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स और इनमें यूज होते हैं, ये लाइक प्रोस्थेटिक्स रोबोटिक्स आर्म्स और लेग्स यूज हो रही हैं, मतलब अब तो ये सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं है, ये एवरीडे लाइफ में यूज होना शुरू हो गया।
1: सर, रोबोटिक नर्सेस का आपके ख्याल में फ्यूचर क्या है?
2: रोबोटिक नर्सेस जैसे रिपीटेटिव टास्क हैं जो कि रोज उन्हें करने हैं कि मेडिसिन रिमाइंडर्स देने हैं या उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करनी है, अगर पेशेंट को लिफ्ट होने में प्रॉब्लम है तो उसको लिफ्ट कैसे करना है, और तक आगे जाके तो AI पावर डिसीजंस भी वो नर्सेज ऑटोमेटिकली लेंगी
1: जी।
2: तो ये इसका आगे स्कोप तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आप हॉस्पिटल इतने ज्यादा नहीं बना सकते हैं, तो अब ये होगा कि इवेंचुअली आप एक रोबोट जो है वो केयर के लिए घर में ही केयर हो जाएगी और आप को हॉस्पिटल को अपना रूम या बेड ऑक्यूपाई नहीं करना पड़ेगा।
1: सर, जब हम रोबोटिक्स बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं तो आपके ख्याल में कितने रिलायबल हैं? क्या उन पर डिपेंड किया जा सकता है?
2: रोबोटिक्स की रिलायबिलिटी तो काफी हाई होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन 100% नहीं होती है, क्योंकि रोबोटिक्स प्रेडिक्टेबल तो होते हैं लेकिन ह्यूमन सुपरविजन जरूरी है। उसकी टेस्टिंग, वैलिडेशन और फेल सेफ मैकेनिज्म हर रोबोट में होने चाहिए और होते भी हैं, बट मिस्टेक हो सकती है क्योंकि इट्स अ रोबोट।
1: सर, अगर कोई गलती कर देता है रोबोट तो उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे आती है?
2: ये तो सिचुएशन पर डिपेंड है कि उस टाइम एक्चुअली क्या फ्लॉ आया। अगर तो डिज़ाइन फ्लॉ आया तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर उसका यूज़ मिसयूज़ हुआ तो वो तो ऑपरेटर पर डिपेंड है, और अगर सिस्टम लेवल इशू है तो वो इंस्टीट्यूशन पर जिम्मेदारी टाइट होती है। लेकिन इसलिए ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसकी ये है कि अब रोबोटिक्स के ऊपर लीगल फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि अगर क्योंकि रोबोटिक्स इन्वॉल्व हो गए इतने ज़्यादा लाइफ में, तो अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होगा फिर जिम्मेदारी किस पे आएगी और क्या लॉज होने चाहिए, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोबाइल रोबोट्स टू मेडिकल मिरेकल्स। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। सर, हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे रोबोटिक्स फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए?
2: मेन जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग है, उन्हें C++ और पाइथन लाजमी आनी चाहिए। लेकिन अगर आप फुली आना चाह रहे हैं तो एम्बेडेड सिस्टम, सेंसर्स, कंट्रोल सिस्टम्स और AI की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा के टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि रोबोटिक्स मतलब सिंपल एक फील्ड नहीं है, इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी। तो एक बंदा स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहा होता, मल्टीपल पीपल डिफरेंट डिसिप्लिन के काम कर रहे होते हैं।
1: और सर, टीम वर्क होता है।
2: टीम वर्क लाजमी जरूरी है और कोलैबोरेशन ताकि अच्छी हो। और लर्निंग के लिए कि आप ओपन सोर्स बहुत अवेलेबल है, आप उस पर लर्निंग करें और एक थोड़े से प्रैक्टिस कर लें तो उसका आप इजीली फील्ड में एंटर हो सकते हैं।
1: सर, अगर हम दुनिया में देखें तो रोबोटिक्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस फील्ड में काफ़ी पीछे है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है?
2: इसकी मेनली टू रीजंस है। नंबर वन तो ये है कि फंडिंग बहुत शॉर्ट है, क्योंकि रोबोटिक्स इज एक्सपेंसिव फील्ड। आपने कोई भी रोबोट बनाना है, आपको सेंसर्स चाहिए, मोटर्स चाहिए, फिजिकल मैकेनिकल डिज़ाइन बनाना है, इन सब के लिए आपको पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे। तो सारा का सारा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट आपको पता ही है पाकिस्तान, और जिस तरह की हम रोबोटिक्स में सेंसर वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए आपको बार दफ़ा तो परमिशन भी लेनी पड़ती है कि भाई हम ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेंसिव बहुत है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो मेन रीज़न यही है कि फंडिंग ही नहीं है और बच्चे काम ही नहीं इस साइड पे फिर आते ही नहीं है कि हम बना ही नहीं पाएंगे, हमें फंडिंग कौन देगा। तो उस पर रिसर्च भी कम हो जाती है। और मेनली अगर हम पूरा रोबोटिक्स की बात करें तो बहुत ही कम डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रॉपर रोबोटिक्स पे काम करवा रहे हैं
1: जी।
2: अगर आप अभी UCP की बात करें, उन्होंने बताया था कि सिर्फ एक रोबोटिक आर्म उन्होंने इंपोर्ट किया है और उसमें पता नहीं मंथ्स लग गए थे
1: जी।
2: तो ये मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इसकी जो इस पे वर्किंग और रिसर्च जो है वो काफी स्लो है।
1: सर, अभी आपने बात की कि पाकिस्तान क्यों रोबोटिक्स की फील्ड में पीछे जा रहा है, कौन कौन सी रीजंस हैं, कोई फ्यूचर आपको नजर आता है रोबोटिक्स का पाकिस्तान में, कोई अपॉर्चुनिटीज हैं इस लिहाज से?
2: अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग नहीं हो रही है, तो अगर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्कोप है ना, क्योंकि अभी जो रिसेंट स्कोप बढ़ रहा है वो आपका मेडिकल में, हेल्थ और एग्रीकल्चर में और सिक्योरिटी में रोबोट्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान में यूज़ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम इंडस्ट्री और एजुकेशन के कोलैबोरेशन करें तो, और ये थोड़ा सा हमारा फंडिंग का इशू रिजॉल्व हो जाए तो बच्चे तो करना चाह रहे हैं, मैंने देखा है बहुत से इंटरेस्टेड होते हैं
1: जी, स्टूडेंट का बहुत इंटरेस्ट है,
2: इंटरेस्ट होता है, तो वो बहुत स्कोप है इसका। मतलब सिर्फ रिसोर्सेज का थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि कमी है, अदर सिर्फ वो पूरे हो जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं।
1: आपके ख्याल में गवर्नमेंट को फंड देने चाहिए?
2: बेसिकली तो गवर्नमेंट को ही फंड, जहाँ जितनी भी बाहर आप जितनी भी यूरोप में, बकायदा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है जो कि सोसाइटी ड्रिवन रोबोट्स बना रहे हैं, और वो सिर्फ एक कंट्री नहीं है, पूरे यूरोपियन यूनियन में इस चीज पे काम हो रहा है। और वो इतनी ज्यादा फंडिंग दे रहे हैं डॉक्टर्स को कि आप ये वाला रोबोट बनाए, इस तरह के रोबोट बनाए, वहाँ स्पेशल सिर्फ सर्टेन टाइप ऑफ लैब्स ही क्रिएट हैं अदर देन यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ पर्टिकुलर रिपोर्ट्स बना रही हैं, और वहाँ पे वो कोई और आके काम नहीं कर रहा है, स्टूडेंट ही जा रहे हैं, एज अ PhD स्टूडेंट, एज अ मास्टर स्टूडेंट जाके वहाँ पे वो रिपोर्ट्स वहाँ पे बना रहे हैं।
1: पर अपॉर्चुनिटीज
2: इतनी सारी हैं, हाँ, पाकिस्तान में नहीं बना रहे क्योंकि पाकिस्तान में फंडिंग ही नहीं है, उसकी कोई सपोर्ट करेगा तो वो उसको ऑब्वियसली बात आगे लेके जाएंगे
1: जी। ऐसे ही है सर, आपने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, हमारे सुनने वालों को आप कोई अपनी जिंदगी का यादगार लम्हा जो आप उनसे शेयर करना चाहें?
2: जितने भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं कोई ना कोई लाजमी आपके साथ ऐसा इवेंट होता ही है जिसमें कि आपको हमेशा याद रहता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो रोबोट्स में रिलायबिलिटी, जैसे आपने हमने पहले ही बात की, जिसका रोबोट सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा ना वो हमेशा कोई ना कोई पोजीशन ले जाता है। बेशक वो उतना फास्ट हो या ना हो। तो मैं अपने बैचलर की बात करेंगे कि हमारे कंपटीटर रिपोर्ट्स थे वो बहुत अच्छा था, वो भी और हम भी। बस ये था कि हमारा रिपोर्ट थोड़ा सा स्लो था, पर हम कहने के मैं 100 टाइम्स चलाएं तो भी 99 टाइम्स वो एक्यूरेट चलता था। उनका ये था कि हमने उन्हें देखा था कि वो कह लें कि 70% चलता था, 30% ना एक जगह जाके प्रॉब्लम कर जाता था। अब जब कंपटीशन आया तो उनका होता है कि वो टॉस करते हैं कि आपने किस अरीना पे प्ले करना है। टू डिफरेंट अरीनाज होते हैं, सेम पाथ्स होते हैं
1: जी।
2: तो मैं ही टीम लीड था तो मैंने उन्हें देखा था कि इस पाथ पे उनका थोड़ा सा 70% सही नहीं चलता है, वो 70% चलता है थोड़ा करता है। तो मैंने, जबकि हमारा दूसरे पे स्लो था लेकिन एक्यूरेट था, ये मुझे डन था, मैंने टॉस जीत के उनको दूसरे वाले पे प्ले करवा दिया। अब जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ, अब उनका रिपोर्ट हमारे रिपोर्ट में तकरीबन ना कोई फुट का फासला होगा, वो 1 फुट आगे जा रहा था, जाते जा रहे हमारे। और वो था कि उसके बाद हमने सेमीफाइनल प्ले करना था
1: जी।
2: और वो नस्ट का, मतलब वो नस्ट का रिपोर्ट था, हम कॉम्पसेट की तरफ से प्रेजेंट कर रहे थे, तो हम और वो पूरी नस्ट जो है ना उनको चेयर कर रहे थे। आखिरी तकरीबन 1 मीटर का फासला रह गया होगा, उनका रिपोर्ट जहाँ पे वो पंगा करता था उसने वहीं पर जाके स्टक हो गया, पूरा हॉल खामोश। और अभी हमारा रिपोर्ट कंप्लीट भी नहीं किया, हमारा उसे 1 फीट पीछे आ रहा है, हमारा पूरी टीम उछल रही है और हमारी जो हालत हुई हुई थी।
1: किस्मत ने आपका साथ दिया,
2: वो यही था। मैं अभी भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ जो मेंटर कहते हैं कि बेशक थोड़ा सा स्लो कर लें पर 100% चलना चाहिए।
1: सही बात है सर। अमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना तजुर्बा और इनसाइट हमारे लिसनर्स के साथ शेयर किया।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसका मौका दिया एंड आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड।
1: लिसनर्स, आज हमें समझ आया कि रोबोटिक्स इंसानी मदद के नए सफर का आगाज है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में। सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: 24/7 only on FM 92.6 New City ki duniya.
1: जिसके खाकी रंग की खातिर कई बदन खुश्क हुए, जिसके ठंडे साए की कीमत एक अहद के ख्वाब हुए, अपनी मिट्टी अपनी छांव क्यों प्यारी है हमसे पूछो.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: मुंडे नच दे।
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीपी के दुनिया, और मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त सुमैरा सहीर अपने सभी सुनने वालों को और अपने प्यारे प्यारे सामीन को तहे दिल से कहती हूँ जनाब खुश आमदीद, जे आनो भले कर आयो सु और बखैर अगले जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कहते हैं ना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसने कुछ अपने गोल्स सेट किए हुए होते हैं कि भाई हमने इस साल में ये काम करना है, अगले साल में हम ये करेंगे, हमने इस महीने तक इतना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको अचीव करना है। तो इसी तरह हमारी जो ज़िंदगी भी है ना, वो एक

ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती है। फिर हम कुछ गोल्स सेट कर लेते हैं, हम कुछ अपने आप से वादे कर लेते हैं, मुआहदे कर लेते हैं कि जनाब हम ये करेंगे और इस तरह से कुछ चीज़ें जो हैं हम इनको प्रायोरिटी देंगे और ये वाली चीज़ हमने इस महीने में करनी है और हम चाहते हैं कि इस महीने हम ये वाली चीज़ें करें और ये वाला जो अपना मकसद है ये हासिल करें। तो वो मेरे ख्याल में आपका जो स्केड्यूल है वो बन चुका होगा, वो सेट हो चुका होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है। एक ज़िंदगी को रवान रखने के लिए, उसको एक रवानी में लाने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स सेट करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो हैं उनको अपने सामने रखना चाहिए ताकि हम उनको देखते हुए, उनको अचीव करते हुए हम आगे जा सकें। और जनाब जब कुछ अचीव करने के लिए हमें आगे बढ़ना है या हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उस सारे प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, बल्कि चीज़ें नहीं कहूँगी मैं, एहसास कहूँगी, एहसास इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं ना जनाबे वाला, वो बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं। वो कौन होते हैं? वो हमारे अपने होते हैं। उनसे हमारा कोई ना कोई रिश्ता होता है, मोहब्बत का रिश्ता होता है, खलूस का रिश्ता होता है, उसके अलावा दोस्ती का रिश्ता होता है, बहुत सारे रिश्ते हैं। आज हमने सोचा कि आज इन्हीं रिश्तों की बात करें जो बहुत अहम है, और हम कैसे इनको निभा सकते हैं, कैसे इनको ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये रिश्ते टूटते क्यों हैं? कौन सी ऐसी मनाजिल हैं जो इन रिश्तों को तय करनी पड़ती हैं? हाँ, मनाजिल तो तय करते ही हैं, लेकिन ऐसा कब होता है कि रिश्ते, जिसे कहते हैं ना कि बस कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं? आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि आप ये खूबसूरत सी गजल सुने, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, UCP की दुनिया।
1: आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं। मेहदी हसन, शहनशाह गजल और मलके तरनम नूर जहां की खूबसूरत खुशगुन आवाजों में ये खूबसूरत सच गजल आप सुन रहे थे। यकीन मानिए, इन आवाज़ों में इतनी खूबसूरती है, इतने एहसास हैं कि दिल को छू जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे कि कुछ हम चीज़ें करते हैं, जैसे हम अहमद रुश्दी की अगर बात कर लें, तो उनके पास एक फ़न था। मैंने अहमद रुश्दी को जितना पढ़ा है, जितना मैंने उनको सर्च किया है, तो मैंने उनकी आवाज़ में एक चीज़ देखी है कि आप उनसे किसी भी किस्म का सॉन्ग गवाना चाहें वो गा लेते थे। अगर आप देखें तो उनको जो एक फेमस मिला था, उन्हें जो एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना बूस्ट मिला था, वो उनको एक सैड सॉन्ग से मिला था। लेकिन बाद में जो उनकी वजह शोहरत बना वो कोको कोरिना था। कोको कोरिना एक ऐसा सॉन्ग था जिसे मैं कह सकती हूँ, जिसको कहते हैं कि एशिया में पहला पॉप सॉन्ग माना जाता है। और वो इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उनसे पहले किसी सिंगर ने पॉप सिंगिंग के आगाज़ नहीं किया था और कोई भी पॉप सिंगिंग की तरफ नहीं गया था। लेकिन उनके उस सॉन्ग कोको कोरिना ने उस नई जहद का आगाज़ किया। और इसके अलावा उन्होंने फिर पॉप के अलावा हिप हॉप किया, रॉक एंड रोल किया और सैड सॉन्ग। आप उनके अगर आप सॉन्ग्स को उठा के देखें तो हमें ट्रेजेडी मिलती है उसमें, हमें ड्रामा मिलता है, हमें हर चीज़ उनके सॉन्ग्स में मिलती है। इनफैक्ट मैं उनका एक सॉन्ग सुन रही थी जो वहीद मुराद और नदीम सर पे पिक्चराइज हुआ था, और उसमें उन्होंने इतनी खूबसूरत, मैं कहती हूँ कि इतने खूबसूरत तरीके से उस सॉन्ग को गाया है। और वो सॉन्ग कुछ इस तरह से था कि उसमें एक हिस्सा जो था वो तब गाना था जब वो नौजवान का था, मतलब जब वो यंग थे, तो एक हिस्सा उन्होंने उस तरह से गाया और एक उन्हें इस तरह से गाना था कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो ओल्ड हो चुके हैं, तो उन्हें उस तरह से गाना था। और उन दोनों हिस्सों को क्या खूबसूरती से उन्होंने निभाया है, मेरे पास वाकई अल्फाज नहीं है। तो आज ये पॉप सिंगिंग का बात जो हो रही है, मरुस्ती साहब की जो बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में हमारे इन लेजेंड्स का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और मेरे ख्याल में हमें गाहे बगाहे इनको याद रखना चाहिए, इसलिए ताकि हम सीख सकें और ये जो सॉन्ग्स हमें दे गए हैं, जो मौसीकी हमें मिल गई है, ये सदाबहार है जनाब, सदाबहार रहने वाली है। अहमद रुश्दी के पास ये भी एहसास था कि उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स गाए, उनके पास भी ये एहसास है और मलके तरनम नूर जहां के पास भी ये एहसास है कि उन दोनों ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो प्लेबैक सिंगिंग है वो की। और जिसे कहते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा मर्तबा है। और ये भी बताती चलूँ कि 1956 में जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम रिकॉर्ड हुआ था, उन सिंगर्स में भी अहमद रुश्दी शामिल थे। तो ये एक खुदादा सलाहियत होती है जो आपको नवाज दी जाती है। अहमद रुश्दी की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें भी ये खुदादा सलाहियत जो है वो नवाजी गई थी। और उनके फैमिली बैकग्राउंड जो था वो म्यूज़िकल नहीं था, वो एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और उनका ये जो शौक़ था वो उनके एक उनके जो अब्बा के दोस्त थे उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये लड़का तो गा सकता है। और फिर उन्होंने इन्हें एक म्यूज़िक एकेडमी में डाला और उस म्यूज़िक एकेडमी में जाके, जैसे कहते हैं कि वहाँ पे उनको मज़ीद नरिश किया गया, वहाँ पे उनकी मज़ीद ट्रेनिंग की गई। और फिर उन्होंने कहते हैं ना क्या क्या कमाल के सॉन्ग गाए, फिर बा कमाल हो गए वो। जना जी से जी बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर हम बात करें पॉप म्यूज़िक की, तो पॉप म्यूज़िक में हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिंगर्स आते हैं जैसे कि नाज़िया हसन। नाज़िया हसन पॉप सिंगिंग का एक बहुत बड़ा नाम है और आज उनकी बात करना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे अहमद रुश्दी ने पॉप म्यूज़िक को एक नई जहद दी, एक नए सफ़र का आगाज़ किया, वहीं पर नाज़िया हसन ने पॉप म्यूज़िक का एक नए दौर का आगाज़ किया। 90s में आप देखते हैं, 80s के आखिर में आप देखते हैं, तो नाज़िया हसन एक पॉप आइकॉन मेरे ख्याल में बन के वो सामने उभर के आईं। और उनके जो सॉन्ग्स हैं वो आज भी जनाब हमारे दिलों में रचे बसे हुए हैं और आज भी हम उन सॉन्ग्स को सुनते हैं, जैसे कि दिल की लगी, बूम बूम बहुत हिट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था, और बहुत सारे ऐसे मज़ीद सॉन्ग्स हैं जो नाज़िया हसन की आवाज़ में हैं। तो आज हम अपने इन पॉप सिंगर्स को इसलिए याद कर रहे हैं, और पॉप म्यूज़िक का मैंने आज इसलिए बात की क्योंकि आज नाज़िया हसन की 54 साल की आज वो हो चुकी हैं। आज उनकी बर्थडे है, उनकी सालगिरह थी, उनको बिछड़े हुए हमसे काफ़ी अरसा हो गया है, तो सोचा आज हम उनको याद कर लें क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में, स्पेशली पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी हैं। उनकी आवाज़ जो कहते हैं ना कि जादू की आवाज़ थी, जैसे अहमद रुश्दी को कहा जाता था कि मैजिशियन ऑफ वॉइस, कि वो आवाज़ के जादूगर हैं, और नाज़िया हसन को हम ये कहेंगे मैजिकल वॉइस, कि जादूगर वाली आवाज़ थी उनकी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी, बहुत ही मीठी आवाज़ थी। तो जनाब आज हम आपको पहले तो अहमद रुश्दी का मैं खूबसूरत सा ट्रैक सुनाने लगी हूँ, और उसके बाद हम नाज़िया हसन का भी आज ट्रैक सुनेंगे क्योंकि दियारे गर्ल्स शो में गज़लें प्ले की जाती हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हमें ज़रूरत है अप्रिशिएट करने की हमारे लेजेंड्स को। तो आइए सुनते हैं अहमद रुश्दी की खूबसूरत सी आवाज़ में ये खूबसूरत सा ट्रैक।

दिल को जलाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया, तेरी गली में आना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। जी जनाब, ये खूबसूरत मसूर कन और खुशकुन आवाज़ थी हमें दुरुस्ती की, जिन्हें मैजिशन ऑफ वॉइस यानी जादू का आवाज़ का जादूगर कहा जाता है। और वाकई ही उनमें ये भी खूबी थी कि वो मुख्तलिफ परिंदों की जो आवाज़ें होते हैं ना, वो भी साउंड में रिकॉर्ड करवा सकते थे और निकाल सकते थे। जनाब, ये खासियत बहुत ही कम लोगों में होती हैं और खुदादा सलाहियतें होती हैं, ये इंसान खुद से क्रिएट नहीं कर सकता। और ये खुदादा सलाहियतें मेरे में भी मौजूद होंगी, आप में भी मौजूद होंगी, लेकिन हमें उन खुदादा सलाहियतों की तलाश करना ज़रूरी है, उनको खोजना ज़रूरी है कि जनाब कहाँ है वो। होता है ना कि छुप जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने भी होती हैं लेकिन ओझल होती हैं, यानी नज़रों से दूर होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नज़रों से ओझल होती हैं, उन्हें कैसे तलाश किया जाए, उसका गुण मेरे ख्याल में इंसान से बेहतर किसी को नहीं आता। तो जनाब, जैसे कि हमने इस खूबसूरत सी म्यूजिकल ब्रेक से पहले बात की थी कि नाज़िया हसन की आज 54th बर्थडे है और आज हम उनको याद कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम उनकी थोड़ी बहुत बात कर लें। उन्होंने पाकिस्तान की पॉप म्यूज़िक में बहुत आला नाम कमाया और बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने भाई के साथ बहुत, यानी जोहेब हसन ने भी उनका साथ दिया और बहुत अच्छे उन्होंने सॉन्ग्स हमें दिए। आज भी हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जोहेब हसन अब भी हम देखते रहते हैं, गाहे बगाहे जो है वो आते रहते हैं और हमें अपनी आवाज़ से जो है वो महसूस करते रहते हैं। तो जनाब, यहाँ बात हुई, हमने नाज़िया हसन की बात कर ली, हमने पॉप म्यूज़िक की बात कर ली, लेकिन अब मौका है और अब लम्हा है कि हम बात करें रिश्तों की। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बताया था कि आज हम बात करेंगे रिश्तों की, कि रिश्तों को हम संभाल कैसे सकते हैं, उन्हें बचा कैसे सकते हैं, और ये टूट क्यों जाते हैं, क्या वजह होती है कि ये टूट जाते हैं, हमसे हमारे अपने ही दूर हो जाते हैं, क्या वजह होती है कि हम नहीं समझा पाते कि हम क्या चाहते हैं और वो नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहते हैं। चलें, कहते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, वो उसका इखलाक होता है, उसका बिहेवियर होता है, वो उसकी तरबियत होती है। चलिए, आपकी अगर थोड़ा से आप गुस्से वाले हैं या आप कुछ इस तरह के हैं कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है या आपसे बातें बर्दाश्त नहीं होती, तो ठीक है, वो आपकी तबीयत का हिस्सा है, लोग आपके साथ गुजारा कर लेंगे। लेकिन कभी ऐसी चीज़ें आएंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें आप में होंगी कि जो दूसरों के दिल दुखाने का बायस बने। जैसे आपको बेवजह आदत है किसी को जज करने की, आपको बेवजह आदत है किसी को टॉन्ट करने की, तो जनाब वहाँ पे असल मसला आता है और वो असल मसला कहते हैं तरबियत का होता है। क्या ही खूबसूरत बात है ना कि जिसकी तबीयत ख़राब हो या तबीयत गुस्से वाली हो, उसके साथ तो गुजारा हो सकता है, लेकिन उस इंसान के साथ गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता जिसकी तबीयत में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो। तो इस चीज़ का ज़रा सा ख्याल रखें कि हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं, हमारे छोटे छोटे रवैये होते हैं, जिससे हमारे अपने ही दूर हो जाते हैं, हमारे अपनों का ही दिल दुख जाता है। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, जैसे आप पे कोई फ्रेंड है, पहले हम दोस्तों की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है मेरे ख्याल में जो सबसे हसीन है, और इसमें हम किसी को जानते भी नहीं होते, हमारा उनसे कोई खूनी रिश्ता भी नहीं होता, लेकिन एक मोहब्बत का रिश्ता होता है, एक जज्बात का रिश्ता होता है, एक अपनायत का रिश्ता होता है, एक ऐसा हसीन रिश्ता होता है जिसकी वजह से हम सब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत अपनापन लगता है, ऐसे लगता है कि शायद ये हमारे बिछड़े हुए, ये हमारी रूह का बिछड़ा हुआ हिस्सा है। तो जनाब, दोस्ती की हम बात करें तो हम देखते हैं कि दोस्त भी हमसे खफा होता है। अब दोस्तों के खफा होने में ऐसी कौन सी हमारी आदतें हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें खफा कर देती हैं, चलिए इन पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपका एक दोस्त है और वो बहुत एक्टिव इंसान है, मतलब वो आता जाता है, घूमता फिरता है, हर जगह वो जा सकता है और वो अकेले अपना काम कर सकता है, लेकिन एक दिन उसने आपको कह दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कि तुम मेरे साथ वहाँ चल सकते हो,
और आपने क्या कहा? आपने कहा, अरे तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है, तुम तो हर जगह जा सकते हो, अकेले जा सकते हो, तो चले जाओ ना अकेले यहाँ पे ही, तुमने मुझे क्यों लेके जाना यहाँ पे, हर काम जब तुम अकेले कर सकते हो तो ये भी कर लो। जनाब अकेले सब कर लेते हैं, जिसका जो काम होता है वो उसको करना जानता है, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है कि हाँ मेरे साथ चलो, तो उसके साथ चले जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसको आपकी वाकई में ज़रूरत हो। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमसे कुछ कहते नहीं हैं, और वो इसलिए नहीं कहते कि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर मैंने कुछ बताऊंगा तो ये कहेंगे, अरे नहीं तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो फिर उनकी बात नहीं बनती। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़रा सा इस रवैये पे काम करें। बाज़ औक़ात आपकी ज़रूरत आपके दोस्त को होती है और आप समझ नहीं पाते। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं नाज़िया हसन की खूबसूरत आवाज़ में इस खूबसूरत से ट्रैक की तरफ।

दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। ये खूबसूरत सी आवाज़ थी नाजिया हसन की, जिन्होंने पाकिस्तान की पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और एक नई जहद का आगाज़ हुआ है। हमारे आजकल भी, आजकल के न्यू आने वाले सिंगर्स भी उनके सॉन्ग्स गाते हैं और बहुत अच्छे से गाते हैं, और एक बड़ी अच्छी ही बात है। तो जनाब, हम इस म्यूज़िकल ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे रिश्तों की, कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं और वो टूट क्यों जाते हैं। एक कहा जाता है ना कि इसलिए टूट जाते हैं कि हम में सर्फ नहीं होता उन्हें निभाने का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़र्फ की बात करते हैं जनाब आप? ज़र्फ नहीं, एक इंसान का जितना ज़र्फ होता है ना, उसको हम सोच भी नहीं सकते, बल्कि मैं लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं कर सकती। हमारा जो ज़र्फ है वो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि हम उन लोगों की भी मदद करते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, उन लोगों के लिए भी जगह छोड़ देते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। आप ज़र्फ की बात करते हैं, चले ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास एक बुज़ुर्ग खातून आती हैं और मुझे कहती हैं मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, मैंने उनको दे दिया, ये ज़र्फ ही तो है। हाँ, ये मेरे वैल्यूज़ में है, ये मेरे इकदार में है कि मेरी कदरों में ये है, मुझे सिखाया गया है कि आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी है, उनकी बात माननी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें एक मकाम देना है, उन्हें अपने से आगे रखना है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपका ज़र्फ भी आता है, यहाँ पे आपका ज़र्फ भी बोलता है जनाबे वाला, वो इस तरह से कि हम हर चीज़ निभा सकते हैं अगर हम निभाना चाहें। ऐसा मत कहें, या मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ वो कहते हैं कि नहीं बस इतना ही था, संभला नहीं, ये हो चुका, वो हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कुछ इस तरह से हो गया। अरे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या दोनों के बीच में होगी? अच्छा चलिए एक बात करते हैं, हम ज़्यादा जो करीब होते हैं वो अपने माँ बाप से होते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने माँ बाप को छोड़ा? कितनी भी गलतियाँ कर लें हम, कितने ही हम उनकी नाफरमानी कर लें, कितना ही हम उनको तंग कर लें, कितनी ही उनकी बेअदबी कर लें, हमारे माँ बाप हमें खुद से जुदा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाते? क्या उनका ज़र्फ बहुत बड़ा है, या उनका दिल बहुत बड़ा है, या हम उनकी औलाद है, उनका खून है, उनकी रूह का, उनके जिस्म का हिस्सा है जनाब? इसलिए कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में एक इस तरह से, जैसे खाने में नमक होता है ना, खाने में नमक ना हो तो हमें फील होता है कि आज खाने में नमक नहीं है, आज जनाब खाना सही नहीं बना। तो इसी तरह से जो रिश्ते होते हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत कमी आ जाए तो हम नहीं महसूस कर पाते, बल्कि महसूस तो करते हैं और बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। हम लोग माँ बाप के बगैर अपनी ज़िंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकते, बहन भाइयों के अलावा हमारा कौन है, हम ये सोचते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो माँ बाप के भी दरमियान हम अपनी कभी अम्मा से लड़के आ रहे हैं, कभी हमने अपने अब्बा से लड़ाई कर ली और कह दिया कि बस, जब हम अपने काम पे गए या जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ गए तो हमने अपने दोस्त को बोला बस तुमने आज मुझे बुलाना नहीं है, आज मैं अम्मा से लड़के आया हूँ, आज मैं अब्बा से लड़के आया हूँ, तो आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो तुमने मुझसे बात ही नहीं करनी, ठीक है जी? तो ये क्या बात हुई, आप लड़ाई घर से करके आए हैं, आपका मूड इधर ख़राब हो रहा है। कभी आपने ये बोला अपने अम्मा अब्बा को कि आज मैं अपने दोस्त से लड़के आया हूँ, आज मैंने किसी का दिल तोड़ा है और आज मैंने किसी को इतनी अच्छी तरह से टोंट मारा है कि वो बंदा पूरी महफिल में शर्मिंदा हो गया और मैं बड़ा खुश हूँ, बोला है? खुश तो हम होते हैं जब हमने किसी को बुरा कह दिया, टोंट मार दिया, जी उसकी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती होगी, ऑर्गेनाइजेशन के सामने बेइज्जती होगी, बॉस के सामने मैं आज बड़ा बन गया क्योंकि आज मैंने उस इंसान के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिसको बॉस बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैं तो भाई आज बड़ा खुश हूँ। क्या वाकई में आप खुश होते हैं? ज़रा सोचिए तो।
हमें लगता है कि हम जिनके साथ काम करते हैं हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं होता। हमारा रिश्ता हर उस इंसान के साथ होता है जिससे हम जिंदगी में एक बार भी मिले होते हैं। अजनबी होते हैं वो हमसे, लेकिन वो भी तो एक रिश्ता होता है ना। एहसास क्या है? एहसास ना हो तो रिश्ते बन सकते हैं? नहीं। तो ये एहसासात भी रिश्ते होते हैं जो हमें जोड़ते हैं, और ये हम पे होता है कि हमने किसके साथ रिश्ते रखना है, किसके साथ रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं रखना। ये हम पे होता है, बिल्कुल हम पे होता है। जैसे हमारे माँ बाप हमें छोड़ नहीं सकते, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, इसी तरह जब हम ये बात कहते हैं ना कि बस मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, चल नहीं सके, ये हो गया, वो हो गया, तो तब मेरे ख्याल में या तो आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं या अगले को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। चलिए इसी बात के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली गज़ल की तरफ, जो कि बहुत प्यारी है। आइए सुनते हैं।

कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, खलील साहब की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत सी गजल आप सुन रहे थे। और इस गजल की जो फरमाइश है वो मुझे पिछले काफी प्रोग्राम से आ रही थी और हमारे सुनने वाले हमें कह रहे थे कि जनाब हमें ये गजल सुनाई जाए। तो आज हमने अपने तमाम सामीन की फरमाइश को पूरा करते हुए खूबसूरत सी गजल उन्हें सुना दी। अच्छा, इसके अगर हम वर्ड पे गौर करें तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक हकीकत को बयान किया गया है, जिसे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि शायरी जो होती है वो आपके उन जज्बों की जुबान होती है जो आप बयान नहीं कर सकते, तो आप शायरी के ज़रिए जो है वो कह देते हैं। और फिर जो मौसीकी होती है, जो आप इस तरह से गज़ल होती है या कोई सॉन्ग होता है, कोई ट्रैक होता है, तो वो उस शायरी को एक ज़िंदगी देता है। यानी मैंने और आपने पोइट्री पढ़ ली, ठीक है, हमने महसूस कर लिया, लेकिन जब उसी चीज़ को एक पेरहन में ढाला जाता है और कुछ इस तरह से उसका, जिसे कहते हैं ना, उसकी नमूद नमाइश कुछ इस तरह से की जाती है कि खूबसूरत आवाज़ हो और उसके साथ लाजवाल मौसीकी हो, तो जो एक आशकार बनता है, जो एक खूबसूरत सी चीज़ बनती है, वो बहुत ही हसीन मुजस्मा होता है, खुशगुन आवाज़ों का मजमूआ होता है, खूबसूरत शायरी का मजमूआ होता है और वो दिलों पे असर करता है। तो ये गज़ल भी उन्हीं चंद गज़लों में से है जो कि पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर गज़लें हैं और हमारे सुनने वाले इनको बहुत पसंद करते हैं। इशफाक अहमद साहब ने क्या ही खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनके भी पाँव होते हैं, ये चलकर हमारे पास भी आ सकते हैं और चलकर हमसे दूर भी जा सकते हैं। तो ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि रिश्ते हमारे पास कब आते हैं और हमसे दूर कब जाते हैं। एक ऐसी हकीकत है जिसे शायद हम बहुत ही, इसे कहते हैं ना, कभी कभार इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं बात करना चाहते, लेकिन हमें करनी चाहिए। आपका रवैये, मेरा रवैया, आपका रवैया, हम सबके रवैये जो होते हैं वो हमारी पहचान होती है। हम जो कहते हैं, हम जो लिखते हैं, हम बोलते हैं, वो ये बयां करता है कि इस इंसान का करेक्टर कैसा है, इसका ज़र्फ कितना है। अच्छा, तो बताते हैं कि रिश्ते कैसे हमारे पास आते हैं और दूर कैसे जाते हैं। एक बात होती है रिश्ता निभाना, एक बात होती है रिश्ता तोड़ देना। अब रिश्ता कब टूटता है? रिश्ता तब टूटता है जब आप उसको तोड़ना चाहते हैं। आप कहेंगे, अरे ये क्या बात कर रही है, रिश्ता तब टूटता है जब हम तोड़ना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मैं तो नहीं तोड़ना चाहता। नहीं, यही तो बात है, हम हकीकत को नहीं कबूल करते। मैं नहीं मानूंगी मेरी गलती क्या है, आप नहीं मानोगे आपकी गलती क्या है। हम गलतियां मानने से डरते हैं, हम गलत होने से डरते हैं। हमें कोई गलत कह दे तो हम कहते हैं, अरे क्या कह रहे हो, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मुझे किस तरह से गलत कह सकते हो। तो जनाब, जब मानना ही नहीं है कि आप गलत हैं, जब ये मानना ही नहीं है कि आपकी गलती है, जब आपने अपने रिश्ते में उस चीज़ को, जिसको बर्दाश्त कहते हैं, जिसको तहम्मुल कहते हैं, जिसको कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिसको समझौता कहते हैं, वो करना ही नहीं है, तो रिश्ते कैसे बन के रहेंगे? हम उनको खो देते हैं अपने रवैयों की वजह से। मुझे गुस्सा आ गया, मेरा गुस्सा ऐसा है कि सब डर जाते हैं और मैंने सबको डरा दिया, और उस डर में क्या हुआ, मेरे बहुत सारे अपने मुझसे दूर हो गए। और वो दूर क्यों हुए? वो इसलिए दूर हो गए कि वो थक चुके हैं मुझे बार बार मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर करके, बार बार मुझे बर्दाश्त करके। वो नहीं चाहते कि वो मेरा गुस्सा सहें। हाँ, बहुत दफ़ा हमारे अपने झुकते हैं हमारे रिश्ते बचाने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम उन्हें झुकने पर मजबूर भी करते हैं, लेकिन वो झुकते नहीं हैं, क्योंकि
एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें भी एहसास होता है कि नहीं, ये क्या बात हुई, हमेशा हम ही क्यों दबे, वो भी तो दबे, हमेशा हम ही को छोड़ें, वो भी तो छोड़ें। तो जनाब ये चीज़ें ज़रूर जहन में रखिएगा। जहाँ पे अना आ जाती है ना, अना आप ये कह लीजिए कि अना तो रिश्तों की नेस्त नबूद कर देती है, उसको बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देती है। और ये बात इतनी ख़तरनाक है स्पेशली रिश्तों के लिए। अना आ गई भाई, अना भी ऐसी वैसी आई कि बस हमारा ताल्लुक उनसे नहीं है तो हमने बात ही नहीं करनी। अच्छा अगर उन्होंने इस तरह का फंक्शन रखा हुआ है तो हमने तो जाना नहीं है, लेकिन हमारा फंक्शन आ रहा है तो हम चाहते हैं कि वो ज़रूर आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो धाक है बैठी रहे और ख़ानदान में हमारा नाम बना रहे कि भाई हम तो नहीं गए लेकिन वो इतने हैं कि वो यहाँ आ गए। तो ये बातें ऐसी होती हैं जिन पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हमें झुक जाना चाहिए, हमें थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। जब आपकी ज़ुबान मीठी होगी, आपका दिल नर्म होगा और आपका दिमाग जो है वो काफ़ी ठंडा होगा, तो जनाब आप बाकमाल बन जाएंगे। बाकमाल बनना बेहद आसान है, आपको ये तीन चीज़ें करनी है और यही तीन चीज़ें जो हैं वो आपके बहुत सारे रिश्ते बचा के भी रख सकते हैं। हम दोस्ती को भी बचा सकते हैं, हम उन रिश्तों को भी बचा सकते हैं जो सिर्फ हमारे साथ काम करते हैं, और उनको हम इसलिए खो देते हैं कि हमें ये होता है कि हमें बॉस की नज़रों में जो है ना वो 100% आना है, और इस चक्कर में चाहे जितने बेचारे इधर उधर आ रहे हैं उनको कैसे रास्ते से हटाना है वो हम जानते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और एक बात कि हालात जो होते हैं ना वो डिसाइड नहीं करते कि हम क्या हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हालात क्या हैं। हालात बुरे आते हैं लेकिन बुरे हालात हमें बुरा बनने पे मजबूर नहीं करते, वो बुरे होते हैं लेकिन वो हमसे हमारी अच्छाई नहीं छीनते, लेकिन हम अपनी अच्छाई जो है वो गंवा देते हैं उस बुराई की वजह से। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि बुराई पे अच्छाई, मतलब अच्छाई पे बुराई जो है वो कभी हावी ना हो। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रिश्तों को बचाने के लिए ज़रूरी है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपने कोई रिश्ते खफा कर दिए हैं उन्हें मना लीजिए, अगर आप सॉरी कह लेंगे, किसी का दिल दोबारा से जोड़ देंगे तो बड़ा ही सवाब का काम है, जल्दी से कीजिए। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, सुनते रहेगा प्रोग्राम दियारे गज़ल। और अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन गजा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.